थो रेड नेपाल ख नेपाल बासे समाचार जी उपेश पाखिनी नाति थौ नेपाल सम्बत छिन्सा सौ पिखु द तसला थो नवमी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपया नापाङ्गु त मुजिया बन्द सत्र थौ सुतेनी सेन ह्यातिङ्गु दु रासोपया महामन्त्री कविन्द्र बुर्ला कुर्तिया कथ थौ सुते नेता इत क मिग या बन्द सत्र लिछ्यागु ख प्रतिनिधि विरुद्ध लागु उजुरी छानबिन या नीति यी मागुली बन्द सत्र मिग लिछ्यागु ख बन्द सत्र उद्योग सङ्घ या प्रदर्शनी केन्द्र जितेङ्गु ख नेपालले नापसिबे खुनुलिपा झरी दुहाँ वगुदो जल तथा मौसम विज्ञान विभाग कथ कोशी प्रदेश शुक्रबार दुहाँ वगु झरी नेपा या न्यागु प्रदेश थेङ्गु ख कोशी मधेस बागमती गण्डकी व लुम्बिनी प्रदेश झरी थेङ्गुदो झरी मो शक्ति जुगुली मिमेथा निना हुने त छु नि तुइगु मौसमविद सञ्जीव अधिकारी दाइदिगु ख नेकपा एमाले उपसभापति विष्णु पौडेल या त सुर्खेत ब्रेन नगर गिरफ्तार यागुदु पौडेल एमाले चुनावी समीक्षा व पुनर्गठन सम्बन्धी ज्याजुली बोधी क्याथ सुर्खेत थेङ्गु ख ज्याजो कोचान ह सुर्खेत प्रहरी प्रमुख ठाकुर प्रसाद पोखरेल थहे गाडी चुना होटेल थेङ्गु ख एसपी पोखरेल पौडेला त थगे गाडी तया जिल्ला प्रहरी ज्याकु थिङ्कु ख सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग मिग जिल्ला प्रहरी ज्याकुती सुर्खेते पौछोया अनुसन्धानी नीति जोनेथुङका वया त नियन्त्रणे कागु प्रहरी धाकुदो ज्याजोले शङ्कर पोखरेल पृथ्वीसुवा गुरुङ छविलाल विश्वकर्मा व रामबहादुर थापा बहादुर लिसे शीर्ष नेता पिनेगु बोती दुगु ख अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग राहदानी छपाई यागु झोले भ्रष्टाचार जुगु थका राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल नाप चिनी खुमेसित ओ स्वापुदुगु कम्पनीया त मुद्दा त अगुदो अर्याल नाप सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिल कुमार केसी विरुद्ध छिगु अर्ब चिनसोङ्गु करोड शिव अपो बिगो दाबी यागुदो अथे तत्कालीन निर्देशक शत्रुधवन प्रसाद शर्मा निर्देशक रविन्द्र राज भण्डारी लेखा अधिकृत तुलसी प्रसाद आचार्य कम्प्युटर इन्जिनियर विपिन प्रसाई शाखा अधिकृत सोमेश थापा या त वहे कथ या पिगो दाबी यागुदो नेपाल सरकार नेपाल भारतीय वनिगो चिया पङ्ग या विशेष छगो ज्यापुच निसङ्गुदो निवादुनी अध्ययनना प्रतिवेदन पेश या त ज्यापुच निसङ्गु धागु ख प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह सौराया कृषि बुइकेगु व तालिम केन्द्र खोरसोर सोयादिगुदो केन्द्र प्रमुख मणि पुरन चौधरीया कथ सक्ल छेन्जपी तालिम केन्द्र थेङ्कादिगु ख अन गुम मा कृषि व नेम मचा कृषि दु सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डाक्टर विक्रम तिमिल सिन्हा सेवाग्राही या त वा च्याक ज्या या त उज ब्यादिगुदो नेपाल टेलिकम भरतपुर ज्याकु सोयगु झोले सेवग्री या भलोसा त्याके फैगु कत ज्या या त कर्मचारी पिन्त उज ब्यादिगु ख मिग हाइवेक्ल राष्ट्रिय समाचार समिति रास या नुगु तालिम छेनाप सोयादिल बागमती प्रदेश या साक्षरता दर चे निगुफ्री छगु प्रतिशत थेङ्गुदो दे या साक्षरता दर नेखुगुफुटी निगु प्रतिशत थ्याम्ले उकै शिवे अपो बागमती प्रदेश साक्षरता दर चे निगुफ्री छगु प्रतिशत थेङ्गु ख ध्यानाचुङ्गु आर्थिक दर या दे या आर्थिक वृद्धि सोङ्गु फुटी चे न्यागु प्रतिशत थेनिगु दुकु मान यागु दु अथे हे दे या प्रति व्यक्ति आए चिन्यास व सुन्यातका अमेरिकी डलर जुबले बागमती प्रदेश या प्रति व्यक्ति आए फुक प्रदेश शिवे अपो निखुस व पी पेङ्गु अमेरिकी डलर थेनिगु प्रक्षेपण यागुदु मुख्य स्वास्थ्य पङ्ग जुया चोङ्गु मि पुगु घा या वास या त अपुकेगु व सर्वसुलभ देखेगु सरकारी प्रतिबद्धता छेलबुला उनाचोङ्गुदु सरकारया सच्ची नु दुनी यागु सच्ची बुदे प्रतिबद्धता कथ अप धाथे अस्पताले मि पुगु खा या वास अपुक हगु ख स्वास्थ्य लिसे खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय प्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारी मन्त्रालय यो कुतल चिनपेङ्गु सङ्घीय अस्पतालले मि पुगु उपचार युनिट निसङ्गुदु
आतक कान्ति बाल अस्पताल, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, कोशी अस्पताल, नारिणी अस्पताल, भरतपुर अस्पताल, डरेलडुरा अस्पताल, भेरी अस्पताल, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, वीर अस्पताल, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मी या उपचार्य नीति ब्याग्लों ब्याग्लों वार्ड निश्चिने थोको गुदो अथे गई सरकारी स्तरीय पाखे किर्तपुर अस्पताल मी या वास यागु विशेष युनिट दो धुकिया नापनाप धौलागिरी प्रादेशिक अस्पताल, सङ्कुवासभा जिल्ला अस्पताल, सुर्खेतिया प्रादेशिक अस्पताल ओ हेटौडा या मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान याना चिन्च्यागु अस्पतालले मी या उपचार या व्यवस्था याना तगुदु नेवा हाइकु ख्य या नेको गु बुसा द छगु ज्याजो याना हङदु सातके लुमती छे बुसाद हना ज्याजुले हाइको या विकास ओ समसिन या ज्या थगु प्रकाशन पाखे जो मधुको योगदान या उया चुना दिम इलोह प्रकाशन या प्रबन्ध निर्देशक नरेश वीर साकिया त नेवा हाइको हना पाखे अङ्गुख प्रतिनिधि सभा या सांसद कुल भक्त साक्ये नेवा हाइको ख्य या पला न्याकेता आर्थिक अभाव जुया चुङ्गु खसा थमिसिन फक्को ग्वाली यागु बच बिहादिल भुसाद हना ज्याजोले वरिष्ठ समालोचक नेपाल भाषा एकाडेमी भाइस चान्सलर डाक्टर पुष्पराज राज कर्णिका र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय हाइकु ख्य व नेपाल भाषा हाइकु ख्य बारे दुग्यङ्क ख तयादिल रोल्पा या माडी गाउँपालिका दुई खालवाङ्गे चुङ्गु खुला चिन्निम यात्रु खापा जुगु प्रहरी जानकारी बिगुख बेलायत र प्रधानमन्त्री किर स्टार्मर राजनामा घोषणा यनादिगुदो आपलङ्कु खिनेगो झाका जुगुनी वेक्ल लेबर पार्टी नेता पाखे राजनामा बिगु घोषणा यनादिगु ख वेक या थासे पार्टी नेता व प्रधानमन्त्री रूपी एन्डी बर्हम ज्याभाला काइगु थैदिगुदो ए महानगरपालिका व ए महानगरपालिका खोको संज्ञा ग्वाली ए महानगरपालिका व्यापी विद्यालय स्तरीय हापाङ्गु उपमेयर कप खोको धेदे बेला या नीति सोमबार मिग ए पत्रकार सम्मेलन जुगुदु नेपाल खोको सङ्घ सन् 2025 विश्वकप खोको प्रतियोगिता हापाङ्गु संस्करण हे निगुगो था कादुङ्गा तुगु कासा स्कुल निसे विकास याना एङ्के या नीति ए महानगरपालिका दुनिन हापाङ्गु उपमेयर कप खोखो प्रतियोगिता 2083 या तिङ्गु ख ए महानगरपालिका खोखो संज्ञा नाय दीपक मर्जन कनादिगु ख कप्तान लियोनल मेसी या निगु गोल अर्जेन्टिना विश्वकप फुटबल 2026 या नकआउट चरिने दुहाँ उङ्गुदु थौ चाने जुगु कासा अर्जेन्टिना अस्ट्रेलिया त निगो गोल यागु ख अथे अर्जेन्टिना कप्तान मेसी जर्मनी या मिरोस्लाभ क्लोज या नामे दुगु चिन खुगु गोल या कीर्तिपन या त लियोनिलाका चिन्च्याग गोल याम हापाम कासामी जुयादिगु दु अथे फ्रान्स ओ इराक सङ्ग गोल नपुगुगु दु अथे हे नर्वे ओ सेनेगल या त बुकुगुदु सेनेगल या निगो गोल यागु खदासा नर्वे सोग गोल यागु ख नर्वे नि च्याद लिपा नकआउट चरने थेङ्गुदु थौ देन्यङ्क नन्याना लाप्सतोया वा वैगु व हिमाली लाग्या चप

0: करते।
1: जुल्फ सरकार से जब चेहरा निकलता होगा, फिर भला कैसे कोई चांद को तकता होगा। सामईन, इन अशआर में शायर ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न मुबारक को इंतहाई लतीफ़ और मोहब्बत भरे अंदाज में बयान किया है। शायर कहता है कि जब सरकार दो आलम की जुल्फ मुबारक से चेहराए अनवर गर होता होगा, तो उस नूरानी हुस्न के सामने चांद जैसी चीज़ को देखने की हाजत ही बाकी नहीं रहती। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न चांद के हुस्न से कहीं बढ़कर है, और जो एक बार उस जलवे को देख ले, उसकी निगाह किसी और हुस्न पर ठहर नहीं सकती। साथ ही इन अशआर में तशबीह अकीदत और अदब का हसीन इम्तिजाज है, जहां मुबालगा नहीं बल्कि मोहब्बत बोलती है। सामईन, अब इन अशआर को मोहम्मद यूसुफ फरीद की आवाज़ में समात फरमाएं, जिसका बोल है, जुल्फ सरकार से जब चेहरा निकलता होगा, फिर भला कैसे कोई चांद को तकता होगा।

वेबला जोखिमले सिद्धेबारी खाममा माङमा मलाबेसी विभाग सेपाङ बहिन्ना मौसम पूर्वानुमान महाशाखालाई अनुसार धनगढी थिए नेपालगञ्ज र तिनी लेप्पा लाभा फ्याङमा धनगढी थिए नेपालगञ्ज र खाप्पै बिमा लामा तापक्रम लेब मलाबेसी पाङबा मोला वीरेन्द्रनगर घोराई थिएन भैरहवा लछ्याम्री तराई थुम्री लेप्पा लाभा फ्याङबा पोखरा याम्बु ओखलढुङ्गा धनकुटा विराटनगर धरान जिरी थिएन ताब्लेजुङ्री ग्रेन नाम ताइबरी थिएन टिप्लिङ टाबरी खाम्चेला मोला विषय पाङबा बोला चुनाउनु लसी पोखरा ओखलढुङ्गा धनकुटा विराटनगर थिएन ताब्लेजुङ्री नुन ग्रेन नाम ताइबरी खाम्चेला मोला विषय विभाग से पाङबा मोला विभागला मौसम खेनपो सञ्जीव अधिकारी से तिनी हुल्ला लामाराङबा प्रदेशला जोमो थिएन पहाड थुम्री मुठेङबा तिप्लिङ टाबा थेन नाम ताइबारी खाम्सेला मुला बेसे सुङबा मुला विभाग से बुठेङबा तिप्लिङ टाबा थेन लेप्पा लाबा से प्रभावित तना लाबा ग्लालाई हुलबादा सतर्कता बारी मोइजन लाबा बुला सम्पत्ति शुद्धिकरण थिएन आतङ्ककारी गेखोरी वित्तीय लगानी लाभा ताम्री निगरानी लाभा मोक्युल निगरानी गेन्दुन वित्तीय कारबाही गेदल फाइनेन्सियल एक्सन टास्क फोर्स एफएटिएफ से नेपाल दा धान्देनुन ग्रे लिस्ट्रे थान्बा मोला नेपाल से ज्याबा गेलाबारी बाङ्लाबन खाबा मुसाइनुन अझै ज्याबा गेलाबारी छोबा आरे विमान एफएटिएफ से ग्रे लिस्ट अर्थात् निगरानीला सूचीरी थान्बा हिन्न एफएटिएफ से चुनुन असारलाला ङ्याकुनु सार्वजनिक लाभा निर्णयरी नेपाल से रणनीतिक बाङ्लाबारी खाम्बा स्पष्ट गे योजना सोसिन कार्यान्वयन लाबारी सुझाव पिन्बा बोला एफएटिएफ से नेपाललाई ताम्री जारी लाभा टिप्पणी री गोढु ताम्दा सोबारी ज्याबा सोबारी सुझाव पिन्बा बोला सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी ठिम्दा तेनबारी आखामा से नेपाल दा विक्रमसम्म 2081 साल फागुन लारी ग्रे लिस्ट्री थान्बा बोबा थेला पाइयान्नु नेपाल से एफएटिएफ तेन एसिया पेसिफिक ग्रुप एपिजी थेन ग्रेन स्तरीय ग्लेठिम प्रतिबद्धता लाभ मोबा सरकार से अध्यादेश प्रतिस्थापन लाबारी गोर्बली विधेयक संसद रि दर्ता लाभ मोला असारलाला ङ्याकुनु संघीय संसदला गोर्गिनुन सदन से स्वीकृत लाभा गोर्बली अध्यादेश अनुसारला प्रतिस्थापन विधेयक सरकार से प्रतिनिधि सभारी दर्ता लाभ हिन्दा संवैधानिक ठिम अनुसार असारलाला घिची से डुकुनु दोनामा चु विधेयक दा गोर्गिनुन सदन से पारित लसी प्रमाणीकरण लसी जिन्दोबा दुई मोला अध्यादेश स्वीकृत लाभा प्रक्रिया घाय बसे प्रतिस्थापन विधेयकला फेरि काठुई लाबारी दुई आछो बहिन्ना दारेमला चिसे भ्रेरे नाङ्ग्रे त्यो विधेयक दा गोर्गिनुन सदन से पारित प्रमाणित थेन प्रमाणीकरणला प्रक्रिया छोन लदोसेला तापम मला प्रतिनिधि सभाला लोनखाङ री काइब्लन भालेन्द्र साहसे सार्वजनिक खरिद निचा संशोधन विधेयक दर्ता लाभ मला विशाम नोर्बन डाक्टर स्वर्णिम वागले से सम्पत्ति शुद्धिकरण मनी लाउन्डरिङ निवारण संस्था संशोधन विधेयक सानम व्यवस्था सहकारी मामिला थेन सामान्य प्रशासन लोन प्रतिभा रावल से सहकारी गिक्सा संशोधन विधेयक दर्ता लाभ मला चुनाव लसी लुई थेन चाबसे स्वच्छता ब्लोन निशा मेहता से स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी लतिलाई नेपाल ठिम्दा संशोधन लाबारी शोभा विधेयक दर्ता लाभ मला ग्रेन लोन छेन सुमन राज अरियाल से सार्वजनिक सेवा प्रभादा प्रभावकारी सवारी बिरान राष्ट्र सेवा कर्मचारी का दिशे इमानदार तसिके लाबारी निर्देशन दोन्छे बमला नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान से नेपाल सरकारलाई छार नियुक्त राजपत्रांकित सोमचा श्रेणीला शाखा अधिकृत गदेला ब्लिचुइचा आधारभूत प्रशिक्षण थुम्बा गेखोरी लिङ्ग थान्छुबान ग्रेन लोन छेन अरियाल से राङ्ला स्वार्थ द च्यासी बिमाइनुन हिउल्दा ज्याबा सवारी खाम्बा ताम्दा ध्यान पिन्छ गे लाबारी निर्देशन दोन्छु बहिन्ना ग्रेन लोन छेन अरियाल से राङ्ला दानला महत्त्व द घोषे युल्बाला गेला सिपिनबारी युल्ला ठिम थेन दोखाङ अनुसार गेलाबा दुरी कर्मचारीका देशे राङ्ला स्वार्थ द आचाना पारदर्शी जिम्मेवार थेन सेवालाबारी नुन निर्देशन दोन्छे बमला विश्व सम्पदा सूचीरी सूचीकृत मोबा याम्बु उपत्यकाला लामन ग्लारी मोबा सम्पदा गदेला सा विवाद छाङ्न लाबारी महालेखा परीक्षकलाई गेदिम्से निर्देशन पिन्बा मोला विश्व सम्पदा सूचीरी सूचीकृत पशुपति बौद्ध थेन स्वयम्बुरी मोबा गुठी संस्थान थेन सम्बन्धित सम्पदा मोबा ग्लारी मोबा कोष थेन समितिलाई सा स्वामित्व विवाद मोबा ताम महालेखा परीक्षकलाई गेदिम्से सार्वजनिक लाभा प्रतिवेदन से हुन्बा मोला गुठी संस्थान ठिम पुरान स्मारक संरक्षण ठिम थेन सम्बन्धित क्षेत्र विकास समितिलाई ठिम से आङबा थिएन आमराङबा सम्पदालाई स्वामित्व किटान लसी संरक्षण लाबारी थिएन व्यवस्थापन लाबारी महालेखा परीक्षकलाई प्रतिवेदन चाहिँ निर्देशन पिन्बा हिन्ना
याम्बु उपत्यकारी सिङमान खाबा सार्वजनिक सवारी साधन दा सुरक्षित थिएन व्यवस्थित सवारी प्रविधि ल प्रयोग लबारी बाङ पिन्छेल त बम्बला दान्दे दोनामा याम्बु उपत्यकारी सिङमा तोङसोम ग्यार्जसोम से गोरसोम सार्वजनिक सवारी साधन बे ड्यास क्यामेरा सिसी क्यामेरा थिएन जिपिएस झाङ बम्बला बिसे याम्बु उपत्यका ट्राफिक प्रहरी गेदिन से पाङबहिन्न याम्बु उपत्यकारी सिङमान खाबा सार्वजनिक यातायातलाई साधन निक्रिय विधा सुरक्षा पिनबारी सवारी व्यवस्थापन लबारी थिएन निगरानी प्रभावकारी सवारी ड्यास क्यामेरा सिसी क्यामेरा थिएन जिपिएस अनिवार्य छाङनुन तोप टिम लागुला बम्बला याम्बु उपत्यका ट्राफिक प्रहरी गेदिमला ग्रेन्ड पोथे नि एसएसपी सुरेश प्रसाद काफ्रे चाहिँ सार्वजनिक यातायात्री दुर्व्यवहार लबा लामा भाडा किन्मा थिएन सवारीलाई अवस्था राङमा ताम गदे गोबारी थिएन नियन्त्रण लबारी थानमा क्यामेरा थिएन जिपिएस टिम लामान प्रभावकारिता सेलम्बला विषय सुङबम्बला उसेम काभ्रेपलाञ्चोक जोङनीबुबा गोर्ङी नागा फार्मरी बर्ड फ्लू स्यापम्बला पशुसेवा विभाग गेदिम काभ्रेपलाञ्चोक से बनेपा नगरपालिका चुइसेसोम सागरी बद्री खत्रीला लियर्स नागा फार्म थिएन परौती नगरपालिका घिस मानेश्वरी एग्रो फार्मरी नाबारे हाँस थिएन नागरी बर्ड फ्लू पुष्टि तापम्बला बेसे पाङबहिन्न गेदिमला ग्रिन डक्टर बज्रकिशोर ठाकुर से खत्रीला लियर्स फार्मरी चुनन असारलाला चुमकुनु थिएन पनौती रिमोबा शर्मिला श्रेष्ठला मानेश्वर एग्रो फार्मरी चुनन असारलाला निस्कुनु बर्ड फ्लू स्यापा हिन्न बेसे सुङबम्बला डक्टर ठाकुर से बर्ड फ्लू स्यापा से सचेतता बरी थिएन जोङ्याम स्याङलारी पशु बाबा थिएन बोर्बा से सुरक्षा जाँच कुङमा सुबम्बला बिसिनन् सुङबम्बला दन्दे राङसे तामाङ साङ्गिरिङ यान्छुजी तिनी त तामाङ साङ्गिर जिन्जी रेडियो नेपाल ज्ञान बल्ला छिगु नसो फ्याफुल्ला

ई सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल बर्दिवास थिक विजय झा सुनल झा मैथिली भाषामे समाचार। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाकी सभापति रवि लामी छाने पार्टीभित्र गुट उपगुट नै बनेबा लेल निर्देशन देलनि छ। महाधिवेशनकै बन्द सत्रकै आय सम्बोधन करैत गुट उपगुटसँ पार्टीकै ऊपर नै लजात से बतौलनि। प्रतिनिधि चयन कयलापर विवेकपूर्ण कयल गेल हुनकर कहब छलनि। प्रतिनिधि सभा तिर्ने 5,000 ऐच्छिक बनायल गेल कहैत ओ अइके 5,000 आवश्यक पड़लापर फिर्ता लऽ जा सकब से बतौलनि। महाधिवेशन निर्वाचन के संदर्भ में ओ जे जीतत ओहो घंटी बाहक जीतत से विश्वास व्यक्त कयलनि। सभापति लामी छाने नेतृत्व चयन के लेल ककरो उम्मीदवारी देवस से वंचित नै कराल जात से स्पष्ट कयलनि। ओ सांसद वा मंत्री भ चुकल व्यक्ति के उम्मीदवार बन नै देव के हल्ला निराधार रहल बतौलनि। पार्टी भीतर होवय वाला सामान्य असंतुष्टि अमन मुटाव के कोठली भित्रे बैसकर विचार विमर्श मार्फत निष्कर्ष लगेबाक चाही पर जोर दैत सभापति लामी छाने सड़क वा मैदान में लौजा का तमाशा नै बनेबा लेल प्रतिनिधि के सचेत करौलनि। रासपा अपने सब मतभेद अंत करय वाला पार्टी भेल उदाहरण प्रस्तुत करबा कहैत ओ बिना विवाद स्वास्थ्य आ स्वच्छ तरीका से महाधिवेशन सम्पन्न का इतिहास रच लेल आह्वान कयलनि। बंद सत्र के उद्घाटन मंतव्य पार्टी सभापति लामी छाने देलाक बाद बंद सत्र के औपचारिक कार्यक्रम सब शुरू भेल अछि। आई बंद सत्र सम्पन्न भक निर्वाचन के कार्यक्रम आगू बढ़ेबाक तैयारी रहल अछि। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी रासपा के नया नेतृत्व चयन के लेल काल बुध दिन निर्वाचन होयत। केंद्रीय निर्वाचन आयोग के प्रमुख भुवन केसी के हिसाबे आय बंद सत्र समाप्त भेल संगे निर्वाचन प्रक्रिया औपचारिक रूप में आगू बढ़त। आय दिन के 2 बजे से शुरू भेल बंद सत्र 6:45 समापन होबा कार्यतालिका रहल अछि। मतदान में विद्युतीय उपकरण के उपयोग होयत। महाधिवेशन में प्रत्यक्ष सहभागी नहीं भेल प्रवास के प्रतिनिधि के लेल रासपा के अपने ऐप से मतदान करबाक व्यवस्था कयल गेल अछि। 80 विद्युतीय उपकरण सँ मतदान के तैयारी भेल अछि। एक सभापति आ 99 केंद्रीय सदस्य चयन कर मतदान होयबाक जानकारी प्रमुख के सी देलनि। कोनो उम्मीदवार के प्रस्तावक आ समर्थक उम्मीदवार होबा नै पाओत। राष्ट्र सभा के विकास आर्थिक मामला तथा सुशासन समिति सार्वजनिक पदाधिकारी के पदमुक्ति संबंधी विशेष व्यवस्था अध्यादेश जारी पश्चात शिक्षा तथा खेलकूद मंत्रालय मात हाथ के निकाय सब के पदाधिकारी नियुक्ति के संबंध में मंत्रालय संग विचार विमर्श कलक अछि। समिति के सिंह दरबार में बैसल बैठक में मंत्रालय के सचिव चोड़ामणि पौडेल विभिन्न विश्वविद्यालय सब आयोग परिषद तथा बोर्ड में पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया के लिए तीव्र रूप में काज भ रहल जानकारी करौलिन। सचिव पौडेल त्रिभुवन विश्वविद्यालय के उपकुलपति के लिए अखन अंतर्वर्ता भ रहल चिकित्सा शिक्षा आयोग के लिए मंत्रालय सब छनौट प्रक्रिया पूरा कक नियुक्ति के लिए मंत्रिपरिषद के सिफारिश कैने आ संस्कृत विश्वविद्यालय काठमांडू विश्वविद्यालय लगायत सेहो छनौट प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुँचल जानकारी दिलन। हुनक हिसाबे अखार महीना भित्री अध्यादेश से पदमुक्त कैल गेल मंत्रालय अंतर्गत के सब निकाय में पदाधिकारी नियुक्त भ जात। बैठक में सांसद सब सरकार पुरान अनुभवी व्यक्ति सब हटाकर अपन व्यक्ति के राख चाहने बतौलन। प्राज्ञिक क्षेत्र के नेतृत्व करय वाला व्यक्ति युवा मात्र नहीं भा अनुभवी से हेबाक चाही कहित सांसद सब सर्च कमिटी सिफारिश कैने सबके देश के उच्च शिक्षा में सुधार कर नहीं सकत से बतौने छले थे। सरकार मेडिकल शिक्षा में अध्ययन के लिए विदेशी विद्यार्थी के कोटा बढ़ेबाक तैयारी कलक अछि। आई संघीय संसद राष्ट्रीय सभा अंतर्गत के विकास आर्थिक मामला तथा सुशासन समिति के बैठक में शिक्षा सचिव चुड़ामणि पौडेल ई जानकारी करौलनि छ। ओ मेडिकल तथा शिक्षा अध्ययन के लिए नेपाल आवा चाहने विदेशी विद्यार्थी के सबसे अधिक आकर्षण भेला से हुनका सबके लिए कोटा थप करबाक नीतिगत निर्णय लेबाक तैयारी में सरकार रहल स्पष्ट कयलनि। ओ नेपाल के विश्वविद्यालय में अध्ययन कर के विद्यार्थी के लिए स्टूडेंट वीजा में सहजीकरण करबाक विषय में सेहो गृह मंत्रालय संग बातचीत भ रहल बतौलनि। सचिव पौडेल के हिसाबे लगभग 1,400 जते विभिन्न देश के विद्यार्थी नेपाल के विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहल अछि जाय मध्य सबसे अधिक आकर्षण मेडिकल शिक्षा में रहल ओ बतौलनि छ। व्यवसायी दीपक भट्ट के व्यवसायिक लाभ पहुँचाब सहयोग के आरोप में पकड़ायल नेकपा एमाले के उपाध्यक्ष तथा पूर्व अर्थमंत्री विष्णु पौडेल के प्रहरी संपत्ति शुद्धिकरण अनुसंधान विभाग में लोलक अछि। पौडेल सोमदिन सुर्खेत से पकड़ायल छलित संपत्ति शुद्धिकरण संबंधी अनुसंधानक लेल हुनका पकड़ि का प्रहरी सुर्खेत से काठमांडू अन्य अछि। हुनका ऊपर अनुसंधान शुरू भेल प्रहरी जनौलक अछि।
हुलाकी सेवा विभाग देश के पहिल आधुनिक पुस्तकालय के संस्थापक शांति मिश्र के सम्मान में हुलाक टिकट प्रकाशन कलक है। आय सूचना तथा संचार मंत्रालय के सचिव लक्ष्मी कुमारी बसनेत आयोजित एक कार्यक्रम में ई टिकट के प्रथम दिवसीय आवरण में टाचा प्रदान कल। विक्रम संबत 2019 में स्थापना भेल नेपाल के पहिल आधुनिक पुस्तकालय के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कने शांति मिश्र के योगदान के स्मरण स्वरूप हुलाक टिकट प्रकाशन कल गए। कार्यक्रम में सचिव बसनेत विक्रम संबत 2016 में स्थापना भेल त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय पुस्तकालय के आधुनिक स्वरूप देव शांति मिश्र के लगन आ मेहनत निर्णायक रहल बतौलन। ओ महिला के योगदान के सम्मान करत हुलाक सेवा विभाग टिकट प्रकाशन कने में अ के सराहना कल। शांति मिश्र के पति नारायण मिश्र दिवंगत पत्नी के पुस्तकालय विकास प्रति के समर्पण स्मरण बारे सुनौने छे। देश के प्रमुख भंसार नाका बीरगंज से चालू आर्थिक वर्ष 2082-83 के जेठ मसांत धरि में 2,09,93,00,00,000 मोल बरौबरिक ईंधन आयात भेल। बीतल किछ समय एम्हर मध्य पूर्वी देश समय उत्पन्न तनाव के कारण ईंधन आयात प्रभावित भेल बावजूदो गत वर्ष के तुलना में 35,53,00,00,000 अधिक के ईंधन आयात बीरगंज नाका से भेल भंसार तथ्यांक देखौलक। गत आर्थिक वर्ष 2081-82 में बीरगंज नाका से 11 महीना में 1,74,40,00,00,000 मोल बरौबरिक ईंधन आयात भेल छल। बीरगंज भंसार नाका से चालू आर्थिक वर्ष के जेठ मसांत धरि में 1,19,74,00,00,000 मोल बरौबरिक डीजल आयात भेल अछि। तऽ वह अवधि में 41,59,00,00,000 मोल बरौबरिक पेट्रोल आयात भेल। बीरगंज भंसार कार्यालय के प्रमुख भंसार प्रशासक कृष्ण प्रसाद मैनाली अ के जानकारी देलनि। आब खेल समाचार। जनकपुर धाम में जारी रहल निको कप महिला T20 राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता अंतर्गत आज संपन्न भेल 3 खेल में लुम्बिनी APF आ बागमती प्रदेश के महिला टीम विजयी भेल अछि। मध्य प्रदेश के खेलकूद तथा समाज कल्याण मंत्रालय मध्य खेलकूद परिषद तथा नेपाल खेलकूद महासंघ के संयुक्त आयोजना में जनकपुर धाम के निर्माणाधीन राम जानकी बहुउद्देश्यीय अंतर्राष्ट्रीय रंगशाला में भेल पहल खेल में कर्णाली प्रदेश के लुम्बिनी प्रदेश 5 विकेट से पराजित कलक। पहल बैटिंग करत कर्णाली प्रदेश के महिला क्रिकेट टीम 20 ओवर खेलित 7 विकेट के क्षति में 85 रन बनौने छल। 86 रन के लक्ष्य सहित खेल मैदान में आयल लुम्बिनी प्रदेश के महिला टीम 15 ओवर में 5 विकेट के क्षति में 86 रन बनबित 5 विकेट से विजयी भेल छल। अहिना ये भेल दोसर खेल में गंडकी प्रदेश के सशस्त्र प्रहरी विभागीय महिला टीम 7 विकेट से पराजित करत विजयी भेल। शुरू में बैटिंग करत गंडकी प्रदेश 20 ओवर के खेल में 8 विकेट के क्षति में 64 रन मात्र बनौने छल। 65 रन के लक्ष्य सहित बैटिंग करा आयल सशस्त्र प्रहरी के टीम 13.2 ओवर में 3 विकेट के क्षति में 70 रन बनबित विजयी भेल छल। कप्तान लियोनल मेसी विश्वकप में अद्भुत कीर्तिमान रचा संगे साबिक विजेता अर्जेंटीना फीफा विश्वकप 2026 के नॉकआउट चरण में प्रवेश कलक। अमेरिका के डालास स्टेडियम में सोम दिन रात भेल समूह जी के खेल में अर्जेंटीना ऑस्ट्रिया के 2-0 गोल से हरवित नॉकआउट चरण में स्थान बनौलक। अर्जेंटीना के जीत में 2 गोल कप्तान मेसी कलन। मेसी के 38वें मिनट में फाकुंडो मेडिना के पास में गोल करत अर्जेंटीना के अग्रता दियोलन। ई गोल हुनक विश्व कप में सर्वाधिक गोल करे वाला खिलाड़ी के कीर्तिमानी 17वां गोल छल। वो ऐसे पहिने के खेल में हैट्रिक करत सर्वाधिक 16 गोल करे वाला जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोज के कीर्तिमान संग बरौबरी कने छले। खेल में मेसी क्लोज के कीर्तिमान भंग करत दोसर हाफ के अतिरिक्त समय में व्यक्तिगत 2 गोल कलन। वो विश्व कप में सर्वाधिक 18 गोल करे वाला पहल खिलाड़ी बनल छत। अना विश्व फुटबॉल में कीर्तिमान के पहाड़ बनौने मेसी विश्व कप में लगातार 7 खेल में गोल करे वाला पहल खिलाड़ी सेहो बनल छत। कीर्तिमानी 6वां बेर विश्वकप खेल रहा मेसी ऑस्ट्रिया विरुद्ध शुरुआत में पौने पेनाल्टी मिस कने छले। वो हुनकर प्रहार किछ बाहर गेल छल। निरंतर दोसर जीत संगे समूह के शीर्ष स्थान में रहल अर्जेंटीना 6 अंक बनौने अछि। तऽ पहिल हारने ऑस्ट्रिया 3 अंक सहित दोसर स्थान में रहल अछि। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ढुआनी प्रवाह पुनः शुरू कला बाद ऊर्जा तथा खाद आपूर्ति के अवरोध के कम करबाक विषय में आशावादी रहल भारत के सुरक्षा प्रमुख अजीत डोभाल आई नया दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स सुरक्षा बैठक में बतौलन। तेल तथा गैस आयात के लिए प्रमुख जलमार्ग के रूप में रहल हॉर्मुज के अखन के अवस्था अनिश्चित रहल अछि। तब ईरान आ संयुक्त राज्य अमेरिका के सहमति गत हफ्ता पुनः खोलल गेल छल, मुदा तेहरान शनि दिन लेबनान में इजरायली आक्रमण के प्रतिक्रिया
मे ऐ के फेर बंद के घोषणा कलक। भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल ब्रिक्स राष्ट्र के सुरक्षा प्रमुख भेट वार्ता पश्चात ऐ के पुनः खोलब स्वागत योग्य विषय भेल बतौलने। सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल भर्तीवास सुनि रहल मैथिली भाषा में समाचार पूरा भेल।

0: ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के प्रथम महाधिवेशन की निर्वाचन तालिका तीसरी बार संशोधन के बाद सार्वजनिक उम्मीदवारों की प्रारंभिक नामावली रात 10 बजे की जाएगी प्रकाशित। बिना विवाद स्वच्छ और स्वस्थ तरीके से महाधिवेशन संपन्न कर इतिहास रचने का प्रतिनिधियों से सभापति रवि लामिछाने का आह्वान। नेपाल में मानसून प्रवेश कर चुका है, फिर भी तराई क्षेत्र में लू का जोखिम बरकरार रहने की जल तथा मौसम विज्ञान विभाग ने दी जानकारी। अत्यधिक गर्मी के कारण नेपालगंज के 163 विद्यालय कल से 3 दिनों के लिए बंद और श्रीलंका में डेंगू नियंत्रण के लिए सेना परिचालन। अब समाचार विस्तार से। चितवन के भरतपुर में जारी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी रासपा के प्रथम महाधिवेशन के निर्वाचन तालिका को तीसरी बार संशोधित कर सार्वजनिक किया गया है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने आज संशोधित तालिका सार्वजनिक की है। तालिका के अनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधियों की अंतिम नामावली सार्वजनिक कर दी गई है। आयोग के प्रमुख भुवन केसी ने जानकारी दी कि आज शाम 5 बजे से महाधिवेशन प्रतिनिधियों की नामावली प्रकाशित की गई। उन्होंने बताया कि आज ही पार्टी सभापति तथा पार्टी के केंद्रीय सदस्यों के लिए नामांकन फॉर्म वितरण और पंजीकरण किया जाएगा। उनके अनुसार उम्मीदवारों की प्रारंभिक नामावली रात 10 बजे प्रकाशित की जाएगी। उम्मीदवारों के विरुद्ध दावेदारी या आपत्ति दर्ज कराने के लिए रात 10:30 बजे तक समय दिया गया है। आपत्ति प्राप्त उम्मीदवारों की जांच पड़ताल रात 11 बजे तक की जाएगी। रात 11:15 बजे तक उम्मीदवार निर्वाचन आयोग के सचिवालय के माध्यम से अपना नामांकन वापस ले सकेंगे। अंतिम नामावली रात 11:45 पर प्रकाशित की जाएगी। किसी ने बताया कि कल सुबह मतदान का पहला चरण होगा। आयोग के अनुसार मतदान समाप्त होने के 2 घंटों बाद मतगणना कर परिणाम घोषित किया जाएगा। पहले चरण का परिणाम घोषित होने के साथ ही दूसरे चरण के नामांकन तथा अन्य कार्यक्रमों की कार्यतालिका प्रकाशित की जाएगी। इसी बीच आज संपन्न महाधिवेशन के बंद सत्र को संबोधित करते हुए सभापति रवि लामिछाने ने पार्टी के भीतर गुटबंदी न करने का निर्देश दिया। उन्होंने महाधिवेशन प्रतिनिधियों से अपने विवेक का प्रयोग करके आग्रह किया है। सभापति लामिछाने ने स्पष्ट किया कि नेतृत्व चयन के लिए किसी भी व्यक्ति को उम्मीदवार बनने से वंचित नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सांसद या मंत्री रह चुके व्यक्तियों को उम्मीदवार नहीं बनने दिया जाएगा, ऐसी अफवाहें निराधार है। उन्होंने बिना विवाद स्वस्थ और स्वच्छ तरीके से महाधिवेशन संपन्न कर इतिहास रचने का आह्वान किया है। इसी प्रकार राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी रासपा के प्रथम महाधिवेशन के लिए 3,849 प्रतिनिधि निर्धारित किए गए हैं। केंद्रीय निर्वाचन आयोग के प्रमुख भुवन केसी ने जानकारी दी कि प्रतिनिधियों की प्रकाशित नामावली पर प्राप्त शिकायतों की जांच के बाद प्रतिनिधियों की अंतिम संख्या निर्धारित की गई है। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग ने बताया है कि नेपाल में मानसून प्रवेश कर चुका है, फिर भी तराई क्षेत्र में गर्म हवाओं हीट वेव का खतरा बना रहेगा। लुम्बिनी प्रदेश के पहाड़ी और हिमालयी क्षेत्रों में वर्षा की संभावना है, जबकि तराई के कुछ स्थानों पर हीट वेव जारी रह सकती है। सुदूर पश्चिम प्रदेश के तराई क्षेत्रों में भी गर्म हवाएं चलने की आशंका जताई गई है। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार धनगढ़ी और नेपालगंज में अधिकतम तापमान 39 से 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की अनुमान की गई है। वीरेंद्रनगर, घोड़ाही और भैरहवा सहित तराई के कई क्षेत्रों में अत्यधिक गर्म रहने की संभावना है। वहीं पोखरा, काठमांडू, ओखलडुंगा, धनकुटा, विराटनगर, धारान, जीरी और तापलेजुंग लगायत के क्षेत्रों में गरज चमक के साथ मध्यम वर्षा हो सकती है। मौसमविद ने बताया कि आज के अधिकांश पहाड़ी और हिमालयी क्षेत्रों में गरज चमक के साथ मध्यम वर्षा की संभावना है। अत्यधिक गर्मी बढ़ने के कारण नेपालगंज में कल से 3 दिनों के लिए 163 विद्यालय बंद किए जाएंगे। इससे पहले भी उपमहानगरपालिका ने गर्मी के कारण विद्यालयों में अवकाश घोषित किया था। छात्रों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव और विद्यालय आने जाने में होने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए 10, 11 और 12 आषाढ़ को विद्यालय बंद रखने को निर्णय किया गया है। उप महानगर की शिक्षा महाशाखा के प्रमुख गोरख बहादुर ने बताया कि जल तथा मौसम विज्ञान विभाग सहित विभिन्न निकायों के सुझाव के आधार पर विद्यालय स्तर की सभी कक्षाएं 3 दिनों तक बंद रहेगी। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी के कारण कई विद्यार्थियों में बेहोशी, सिरदर्द और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के लक्षण दिखाई दे रही है, इसलिए विद्यालय बंद करना आवश्यक हो गया है। नेपालगंज उप महानगर पालिका में 82 संस्थागत, 42 सामुदायिक और 39 धार्मिक विद्यालय सहित कुल 163 विद्यालय है। जल तथा मौसम विज्ञान कार्यालय कोहलपुर के अनुसार आज नेपालगंज का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं अब कुछ देर विज्ञापन।
1: ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
2: सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
1: यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
2: पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
1: किन टेन्सन लिन्छस् बाबु, हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
2: ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
1: सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्।
3: नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
0: अब बाकी समाचार। सूचना तथा संचार मंत्री डॉ. विक्रम तिमल सिन्हा ने कहा है कि लोकतंत्र में जनता केंद्र में होती है, इसलिए जनता को खुश और संतुष्ट करने वाले तरीके से काम किया जाना चाहिए। आज जिला हुला कार्यालय चितवन के निरीक्षण के बाद मंत्री तिमल सिन्हा ने कहा कि जनता के को संतुष्ट होने पर ही संस्थाओं के प्रति विश्वास बढ़ता है। मंत्री तिमल सिन्हा ने यह भी कहा कि कुछ चीजें डाक हुलाक के माध्यम से भेजना अधिक सुरक्षित होता है। वन्य जीवों के हमलों में अपने अभिभावकों को खो चुके मानव वन्य जीव संघर्ष से प्रभावित परिवारों के विद्यार्थियों को आज छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। कृषि, वन तथा पर्यावरण मंत्री गीता चौधरी ने निकुंज कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रभावित परिवारों के छात्र छात्राओं को प्रति व्यक्ति 10,000 रुपये की दर से छात्रवृत्ति राशि वितरित की गई है। यह आर्थिक सहायता उन विद्यार्थियों को प्रदान की गई है जो कक्षा 1 से 12 तक अध्ययनरत है और जिन्होंने विभिन्न समयों पर बाघ, भालू, गैंडा तथा हाथी के हमलों में अपने अभिभावकों को खो दिया है। काठमांडू उपत्यका अपराध अनुसंधान कार्यालय की टीम ने विदेश भेजने का झांसा देकर 23,65,000 रुपये की ठगी करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार कर सार्वजनिक किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में युवक राज पराजुली 50 वर्ष, टंक बहादुर खड़का 34 वर्ष तथा मनीष पोदार 34 वर्ष शामिल है। यह जानकारी कार्यालय के पुलिस उपरीक्षक सूरत कुमार थापा छेत्री ने दी। शिकायत के आधार पर इन्हें गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि पराजुली ने न्यूजीलैंड भेजने का वादा करके 16,65,000 रुपये, खड़का ने लिथुआनिया भेजने के नाम पर 5,00,000 रुपये और पोदार ने ब्रिटेन भेजने के झांसा देकर 2,00,000 रुपये लिए थे। पैसे लेने के बाद उन्होंने पीड़ितों को विदेश नहीं भेजा और संपर्क से बाहर हो गए हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। हाल के दिनों में मच्छरों के फैलने से डेंगू बुखार के मामलों में वृद्धि होने के बाद इसे नियंत्रित करने के लिए सेना को तैनात किया जा रहा है। श्रीलंका के स्वास्थ्य अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों के अनुसार डेंगू संक्रमण के कारण प्रतिदिन 1,000 से अधिक मरीज अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं। अनुराग कुमार दिशा नायके के कार्यालय ने बताया कि श्रीलंका की सेना, नौसेना और वायुसेना के अधिकारी मच्छरों के प्रजनन स्थलों की पहचान कर उन्हें नष्ट करने के लिए गठित विशेष इकाइयों की सक्रिय रूप से भाग लेंगे। डेंगू एक ऐसी बीमारी है जिसमें तेज बुखार, सिरदर्द, उल्टी और मांसपेशियों में दर्द होता है। गंभीर स्थिति में यह रक्तस्राव का कारण बन सकती है और मरीज की मृत्यु भी हो सकती है। इस वर्ष अब तक लगभग 50,000 डेंगू मामलों की पुष्टि हुई है, जिनमें 29 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इससे पहले के वर्ष में 2017 में 1,86,000 लोगों में डेंगू संक्रमण की पुष्टि हुई थी और 440 लोगों की मौत हुई थी। डेंगू फैलाने वाला एडीज मच्छर अपनी काली और सफेद धारियों वाली टांगों से पहचाना जाता है। यह ठहरे हुए पानी में प्रजनन करता है। सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि विशेष सैन्य इकाइयों बनाई जाएगी और जो लोग अपने परिसर में मच्छरों के प्रजनन की स्थिति बने देंगे, उनके खिलाफ भी कानून की शक्ति से पालना कराया जाएगा। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 30.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के प्रथम महाधिवेशन के निर्वाचन तालिका तीसरी बार संशोधन के बाद सार्वजनिक उम्मीदवारों की प्रारंभिक नामावली रात 10 बजे की जाएगी प्रकाशित। बिना विवाद स्वस्थ और स्वच्छ तरीके से महाधिवेशन संपन्न कर इतिहास रचने का प्रतिनिधियों से सभापति रवि लामिछाने का आह्वान। नेपाल में मानसून प्रवेश कर चुका है, फिर भी तराई क्षेत्र में लू चलने की जोखिम बरकरार रहने की जल तथा मौसम विज्ञान विभाग ने दी जानकारी। अत्यधिक गर्मी के कारण नेपालगंज के 163 विद्यालय कल से 3 दिनों के लिए बंद और श्रीलंका में डेंगू नियंत्रण के लिए सेना परिचालन। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।
4: सादा खाना 100 रुपियाँ, मटन खाना 200 रुपियाँ। ओए, मोबाइलको डाटा पनि हामीले चलाएको मेनु अनुसार महँगो र सस्तो पर्नु पर्ने होइन र?
5: हुन्छ नि मित्र, फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, भाइबर, व्हाट्सएप जस्ता सामाजिक सञ्जालहरू मात्रै चलाउने हो भने नेपाल टेलिकममा असाध्यै सस्तो मूल्यमा सोसियल मिडिया डाटा प्याक पाइन्छ। त्यही नै मजाले चलाउने
6: स्टार 14-15 हेस डायल गर्नुहोस्।
3: नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।

0: गजल गंगा।
1: रुकावट आउँदा जाँदा मुसाफिर, लगाउन आउँछ अन्दाजा मुसाफिर। रुकावट आउँदा जाँदा मुसाफिर, लगाउन आउँछ अन्दाजा मुसाफिर। मलाई भन कहाँ पुग्ने हो कोसिस, कहाँ हिँड्छ नि बाटोका मुसाफिर। लगाउन आउँछ अन्दाजा मुसाफिर, जमाना देखिछौँ एकसाथ हामी, जमाना देखिछौँ एकसाथ हामी। म मन्जिल हुँ रहो दुनियाँ मुसाफिर, लगाउन आउँछ अन्दाजा मुसाफिर। खबर सोधुन यो हावासँग मेरो, खबर सोधुन यो हावासँग मेरो। बनाएका बने जस्ता मुसाफिर, लगाउन आउँछ अन्दाजा मुसाफिर। अझै छन् चाहना डुब्ने कसैका, अझै छन् चाहना डुब्ने कसैका। अझै छन् साथ अप्ठ्यारा मुसाफिर, लगाउन आउँछ अन्दाजा मुसाफिर। सबैले मागे जति भेट्टाउँदैनन्, सबैले मागे जति भेट्टाउँदैनन्। हुँदैनन् पुराहर सपना मुसाफिर, लगाउन आउँछ अन्दाजा मुसाफिर। रहन हामी दिँदैनौँ शर्त राखी, रहन हामी दिँदैनौँ शर्त राखी। यही रहने थिए जोया मुसाफिर, लगाउन आउँछ अन्दाजा मुसाफिर। गरुन् यो जिन्दगी पुरा कुनै दिन, गरुन् यो जिन्दगी पुरा कुनै दिन। रिदम आधा सफर आधा मुसाफिर, लगाउन आउँछ अन्दाजा मुसाफिर। रुकावट आउँदा जाँदा मुसाफिर।

वहम गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

0: रेडियो नेपाल नयाँ नेपालको समावेशी आवाज राष्ट्रिय रेडियो राष्ट्रको संचार
1: I'm sorry नमे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मुझे प्लीज माफ कर दो
2: इट्स ओवर अब सब कुछ खत्म हो चुका है शायद मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ लेकिन अब तुमसे शादी

आलिंगन आपु ही आपु निहार, जन मन मोहन ही नहीं निज मन मोहन हार। आपनो रूप राशिमा आफे मोहित हुने श्याम सुन्दर केवल जन मन मोहन मात्र हैनन्, निज मन मोहन हुन्। मनमोहन श्री कृष्ण चन्द्रका चरणमा कोटि कोटि प्रणाम गर्दै कार्यक्रम अध्यात्म सन्देशमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत एवं राधे राधे। आउनुहोस् कार्यक्रमको शुभारम्भ गरौँ सुमधुर पद गायनबाट। प्रस्तुत पद जगतगुरु श्री कृपालुजी महाराजद्वारा रचित प्रेमरस मदिराबाट लिएको हो।